0: मेरे नेत्रों नु ना छे, मेरी अखां नु कुछ ना आख कांगा, क्योंकि इन्हां नेत्रां च साई दे वेखण दी सिक है और सारे शरीर नु बेचकता है। मैनू जरा भी परवाह नहीं, जो बन जांदे ना डरां, जे सो प्रीत ना जाए। ए नेत्र प्यारे दी इंतजार पे कर देना, कद आवेगा। इतना समा बिताया, अजे भी रब नहीं मिलिया। प्यारी साध संगत आखो सतनाम, मायूस होके बाहर फरीद एक दरख्त हेठां बैठ गया। दरख्त दे उत्ते पंछी चिड़ियां बोल रही हैं। फरीद ने तख्या, पंछी रौला पा रहे हैं, चिड़ियां बोल दियां हन, मेरी बंदगी दे विच खलड़ पा रही है। अंदर गुस्सा आ गया, तलखी आई, तकिया ते किया, चिड़ियो तुसी मर क्यों नहीं जांदी? कहण दी देरी सी, सारियां चिड़ियां दरख्त तों डिग पईयां ते धरती ते तड़फण लगी। ए तां सचमुच ही मर गईयां, तड़फ पईयां। दिल च दर्द आ गया, क्योंकि सिमरन करने वाले का जिहड़ा मन हुंदा है वह बड़ा कोमल हुंदा है। दुखिए नूं वेख के दुखी ते सुखिए नूं वेख के मालिक का शुक्र। मन बड़ा नरम। फरीद ने ठंडा सा लिया, ओ पापी मन, तू भी पंछी ते ए भी पंछी, इन्हां ने तेरा की बिगाड़िया? विचारियां तड़फ रही हैं, दर्द आया, वचन किया चिड़ियो उड़ जाओ, कहण दी देरी सी, सारियां चिड़ियां उड़ गई। हैं, मेरे भी तो शक्ति आ गई है, भावें रब ने मिलिया पर रब की शक्ति तो आ गई है ना, मारिया भी जीवाल भी दिता। अंदर हंकार आया, सारी तुर पिया। गर्मी दी मौसम सी, सामने नगर है, पिंड दे बार बार एक खूह, खूह दे उत्ते एक नौजवान मुटियार पानी पी पर दी, प्यास लगी, चलो मना पानी पी। फरीद जी खूह दे कोल आए, इस नौजवान लड़की वल तकिया ते किया, बेटी मैनू डाढ़ी प्यास लगी है, पानी दा घुट पिला। पानी भरन वाली मुटियार ने फरीद वल वेखिया, पानी दा डोल खूह विचों कढ़िया ते बाहर डोल दित्ता। हैं, इसने मैनू पानी नहीं पिलाया। फिर फरीद ने कहा, बचड़ा मैनू डाढ़ी प्यास लगी, मैनू पानी दा घुट दे। दूजा डोल कढ़िया, इस बीबी ने यह भी बाहर डोल दिता। फरीद नूं गुस्सा आ गया, केडी गुस्ताख लड़की है, इनू यह पता ही नहीं है कि मैं प्यासा, मेरे लब सुकते जाते हैं। दो मेरी किया है, पानी तो पिलाना एक पास है, मेरे वाल वेखदी नहीं, पानी कढ़ के बाहर डोल दी। गुस्सा आया ते क्या, मैनू पानी क्यों नहीं पिलांदी? तो पानी भरन वाली लड़की जिसका नाम सी माई रंग रतड़ी, तकिया तिरछी निगाह नाल ते किया, ओ फरीद, ए कोई जंगल दियां निखसमियां चिड़ियां नहीं जिन्हां नूं मार के जवाल लवेगा, मैं खसों वाली आखो श्री वाहिगुरू, सारे आखो वाहिगुरू। कोई रसना इस पवित्र पावन नाम तू वांझी ना रह जाए। गुरुदरबारे जुड़े हो, सच दा वणज कर रहे हो, आओ भाई सच दे वपारी हो, प्यार नाल सारे आखो सतनाम। फरीद ने सुने, पानी की प्यास तो बुझ गई, ए प्यास लगी है जंगल बियाबान च मैं चिड़िया मार के जो आ गई। इंसान तो की उथे हैवान ही कोई नहीं थी, पर तेन कि पता लग गया। बेटी तेन किस तरह पता लग गया? इन्हें हस के कहा, मैनु सब पता है, है? मैं इतनी बंदगी की है, अजय मेरे अंदर ही अंतर्ज्ञानता नहीं आई, तेरे अंदर किस तरह आ गई? हाथ जोड़ के फरीद ने पूछया। माई रंगरतरी ने कहा, फरीद ये सारी कृपा मेरे पति दी है। पति दी किस तरह? सारी विथ्या दसी। फरीद, माता पिता ने मेरी शादी कर दी, मैं अपने सहुरे घर चली, अद्धी रात का समा से मैं अपने पलंग ते लेटी हुई सी, अचानक ही मेरे कन्ना विच आवाज आई, पानी। आवाज सुनी तकिया, किधरों आई है ये आवाज? वेखिया मेरे सुहाग ने पानी मंगया। सोचे पहला दिन है, अपने बाबल दा देश छड़ के अपने पिया दे घर विच आई, किसी होर ने पानी नहीं पिलाया मेरे पति। उठ लोक लज्जा नु त्याग के फरीद पानी दा छन्ना भरे, अपने पति दे पलंग दे कोल पहुंची, पर फरीद मेरा पति फिर सौ गया। असि आखो सिरी लाई, नींदर आ गई। नींदर बड़ी प्रबल है,
1: नींदर बड़ी प्रबल, कहना थोड़ी उठे भी आ गया।
0: जे मैं भी जाके सौ जावांगी तो पति प्यासा है, इन्हें पानी मंगया है, ते जे जगाऊंदी हां तां बेआरामी, जे मैं जाके आराम करदी हां पति प्यासा सुता पिया, ते जे जगाऊंदी हां तां बेआरामी। ए सोच के फरीद मैं अपने पति दे चरणा वल पानी का भरिया छन्ना लेके खड़ो गई, जिस वेले उठणगे उस वेले पी लैणगे। काफी समय के बाद मेरे पति ने नेत्र खोले, मेरे वल तके, भागवान तू इथे किस तरह? सारी विथ्या दसी, तुसी पानी मंगया सी, पानी का छन्ना भर के तुहाडे कोल पहुंचे, तुसी सौ चुके सो, सोचिया तुहानू प्यास लगी है, जे जगाऊंदी हां तां बेआरामी है, इस वास्ते इस इंतजार विच पानी दा छन्ना भर के खड़ोती हां, मेरे साईं जी पानी पीओ। फरीद मेरा पति उठिया, मेरे हत्थां तू छन्ना लैके पानी वाला उसने अपने मुंह नाल लाया। फरीद मैं सच कहिंदी हां, ज्यों ज्यों मेरे पति दे अंदर पानी

चतुर चक्रवर्ती चतुर चक्र भूते चतुर चक्रवर्ती चतुर चक्र भूते स्वयं।

अशोक है अकर्म है अपर्म है। वाहे गुरु अलोक है अशोक है अकर्म है अपर्म है अजीत है।

पंक्ति दे अंदर जरा सोचो कि सतगुरु ने की भेद रखिया। एक बेबल होई होई जीव रूप स्त्री सतगुरु दे चरणा च अरदास करदी है, ते सतगुरु गरीब नवाज सचे पातशाह महाराज ने इसका नक्शा बड़ा सुंदर खिंचया है। पंक्तियां दोनों का डिस्टेंस है भावे, पर फासला जरूर है, पर अंत जड़ा है ना, शब्द का प्यार, शब्द की मिलावट, शब्द का संग्रह गरीब नवाज सचे पातशाह ने इथे आके किया। जीव प्राण सुख दात्या निमख निमख बलहार जियो, क्योंकि दयो गसाई मीतला तू संग हमारे बाद। एदा मतलब यह होया भाई सतगुरु गरीब नवाज सचे पातशाह ने जेड़े शब्द की पंक्ति लिखी है ना, इसका भाव बड़ा गहरा है। भाई हो अकाल पुरख महाराज, हे निरंकार, हे प्यारे पति गुरुदेव, हे मालिक, हे स्वामी, हे मेरे प्यारे महबूब, दुनिया दे रचनहार दाता, तू साडे संग रहिंदा सै, साडे नाल जीउंदा सै, साडे नाल नाल चलदा सै, साडे घर दे अंदर तेरा निवास सी, तेरा साडे घर दे अंदर वासा सी, साडे सिर उपर तेरा हथ सी। गरीब नवाज सचे पातशाह पता नहीं की कारण होया तू साथों विछड़ गया, तू साडे घर विचों चला गया, सतगुरा तू साडे घर विच नहीं रहा, तेरा हथ साडे सिर उपर नहीं रहा, मेहरबान गुसाई तेरी कृपा साडे घर अंदर नहीं रही। बड़ा समा हो गया दर्शन कीते हैं, तू तो साडे नाल रहिंदा सैं, कोई गल ते दस, नाराज क्यों होया? नाराजगी है कुल दस, केड़ी नाराजगी है, की भूल होई है, की गलती होई है? जीव रूप स्त्री भी अपने पति दे चरणा च अरदास करदी ना, महाराज स्वामी मालिक प्यारे पति गुरुदेव जीओ, की भूल होई है, नाराज हो गए, मुंह फेर के बैठे होयो, की गल होई? करवट भला ना करवट तेरी, लाग गले सुन बिनती मेरी, हां वारी मुख फेर प्यारे, करवट दे मोको काहे को मारे। किड्डी बेबलता दी अवस्था है, किड्डी विछोड़े दी अवस्था है, किड्डी बैराग दी अवस्था है। कहंदे कलवत ते सिर दे उपर धरिया जावे, शरीर आरे नाल दो फाड़ हो जावे, मैनू मंजूर है, पर हे प्यारे पति, हे प्यारे गुरुदेव, हे प्यारे मालिक, तेरी पिठ तेरा मुंह परले पासे सानू परवान नहीं। करवट भला ना करवट तेरी, लाग गले सुन बेनती मेरी, हमारी मुख फेर प्यारे, करवट दे। तू मैनू मारना ते उदा ही गला घुट के मार दे ना, मैनू करवट दे के, मैनू पिठ दे के क्यों मार रहे हैं, क्यों परा नू मुंह

एक देश दी किसे संप्रदाय दी किसे धर्म दी अपनी भाषा नहीं। संगीत एक ओ भाषा है जो विश्व भाषा है। इस तुहाडे कोल जिहड़े पौधे लगे ने आ मेरे पिछले पासे भी लगे ने पौधे, यह भी सुनना चाहते ने, यह भी शांति महसूस करते ने और यह भी प्रफुल्लित होंगे ने। इन्हां विच भी बधेरा रस भरदा है। इस तों इलावा जानवर भी पशु भी बधेरा दुध दिंदे ने, वह भी मस्त हो जाते ने। इत्थे ही बस नहीं, सप भी हो जाता, पत्थर भी हो जाते ने, फिर एक मनुख क्यों नहीं हो सकता। गुरु नानक का संगीत सुन के मनुख क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है, पर जे कीता जाएगा जिवें आप जी सारे किले गए इसे तरह किले जाओगे ना जे फिर बार बार सुनोगे। इस करके आप जी ने जिहड़ा सहयोग दिता है, मैं आप जी दा बस जी मैं पहला बेनती की सीने की डूंघाई चो धनवादी हाँ हर एक दा। और बाकी जितने भी रागी सिंह आए ने इन्हां दी देखो कैसी परमेशन है। गिनती की जदों गरीब नवाज ने बाणी रची तां उहदे च 52 नखरी रखी, ते जदों गुरु हरगोबिंद सिंह पातशाह जी ने ग्वालियर दे किले विचों कैदी छडाए सन, बंधन च पै छडाए सन, वह भी लोग 52 ही सन, 52 कलियां वाला चोला पाया सी। उस तों बाद धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने अपने दरबार विच 52 कवि रखे सन, पर जदों अज गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ने सिख जग दी झोली च पाया खजाना तां 52 ही रागी मिले सानू। सानू कोई तां चिट्टियां कंधां नाल जोड़ दिंदा कि संगमरमर लगदा तो संगमरमर लाउणा, कोई शामियाने नाल जोड़ दिंदा। वैसे सब ठीक चंगा मुबारक मेरे गरीब नवाज दे उच्चे मंदर भावे हीरे जवाहरात ना जुड़े जान मुबारक ने, पर मंदिर नाल नहीं जुड़ना, अंदर नाल जुड़ना है। जेड़ी साड़ी जुड़न दी थां है वो मंदिर विच बैठा, जिहड़ा मकान नहीं मकीम बैठा उहदे नाल जुड़ना है, मालक नाल जुड़ना है। इस गल तो सदा सचेत रहना, मेरिया भुलां गलतियां मैनू बख्शदे होए मेरे नाल फतेह दी सांझ करो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की।

बिना शस्त्र के संग नर भेट जानो, बिना शस्त्र के संग नर भेट जानो। गुरु गोबिंद सिंह का गुफाक है, बिना शस्त्र जे आप केस धरे हुए हो ते शस्त्र ना हो ते गुरु गोबिंद सिंह कहते सिखो भेड़ बकरी तो वध तुसी कुछ नहीं। इसलिए तुहानू भेड़ बकरियां नहीं मैं बनाया, मैं तुहानू सिंह बनाया शेर। और शेर पता कौन हुंदा है? शेर मैदान जंग विच उत्तों छाल मार के आउंदा, छाल मार के। मैं तुहानू दसदा दिल्ली गुरुद्वारा शीशगंज साड़न लई 12,000 की टोली आई, 12,000 की, 4,000 ते आया इधरों फतेहपुरी वालों, ते 4,000 आया लाल किले वालों, ते 4,000 सामने उस स्टेशन वालों आया, ते जिहड़े सी ना उन्हां दे खिलाड़े होए बंदूकां लैके वह भज गए, जिहड़े दुष्टां दी फौज सी वह भज गई। ते दो चार साढ़े सिख बेचारे लागे कोतवाली, उन्हां नूं पिस्तौल ते उन्हां रात ही खोले सी ते डंडे इन्हें हत्थ च फड़ाते सी, वह डंडे लैके शीशगंज अंदर आण बड़े। असीं डह सा कीर्तन करन बाबे नूं साडे राम जपो जी ऐसे ऐसे, हां जी ये राम ही डह सी जपण। उन्हें सिखा आण के कहा भाई खालसा जी हुण राम जपना छड्डो ते खंडे खड़काओ, 5 मिंट तुसी होर चुप कीते रहे ते तुहानू इन्हां ने उत्ते ही आण के फड़ के जीवदे साड़ देना, धीआं तुहाडियां खिच के लै जाणियां, आ गोलकां गलकां लुट के गुरु साहब की बेदबी हो जानी। 5 मिंट केवल रहिंदे, जे कुछ कर सकते तो कर लो। यह साढ़े सिंह साहब बहादुर महाराज ने नमस्कार बख्शन, गुरु गोबिंद सिंह साहब ने थापी दिती। और इन्हां कोल शस्त्र सी जिहड़ा सानू बाबा महाराज बाबा जरैल सिंह जी ने कीर्तन च भेटा दिता सी। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज, गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने, प्यारे खालसा जी मेरी बेनती सुन लो, मेरी बेनती सुन लो, मैं गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने थापी दी, इन्हों के अंदर वास किया और शस्त्र कढ़िया, 3-4 सिंह होर सी वो इन्हों के नाल हो गए और इन्होंने छाल मार के बबर शेर जिमें बबर शेर के नजारे उथे मैं वेखे। गुरु गोबिंद सिंह की बाणी मैं पढ़ना हूं, पाप समूह बिलासन को कल की अवतार कहावेंगे, तुरकच्छ तुरंग सपच बनो करकार कृपाण कम पावेंगे, निकसे जिम केर पर्वते तसोर दिवाले पावेंगे, फल भाग पया है संभल के हरजू हर मंदिर आवेंगे। ओ मैं सुनिया एक तुक, निकसे जिम केर पर्वते, केर का मतलब बब्बर शेर है, बब्बर शेर जो भुखा हुंदा है वह जो फिर पर्वत तो पवक मार के छाल मार के जो मैदान च आउंदा है उन्हें फिर जो है ना वो पता की लिखे वो जो आप पढ़ते हैं गुरु नानक साहब का, हां जी सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध जग चान होवा, जो कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलोवा, अगे की है सिंह बुके सिंह फिर गजे ते की होया मिर्गावली पन्नी जाए, मिर्गावली पन्नी जाए ना तीर करवा, ए बाबे मैं छाल मार के शीशा के पौड़िया तो तलवार इतने फल ली ते जकारे छड़ दे पंज पै पंज के वह 5-7 पिछे बेचारे मेरे वर्गे वह भी मगन मगन भजे आन, जो उन्हें वेख्या दुष्टा भाई ये आ गए तलवार इतने रखी बाबे जरनैल सिंह वाली, वह 4 लारियां सी ना फतेहपुरी वाला भज उठा, 10-15 दम टुट गए, 5-7 गोगे गोडे टुट गए, है जी जो भज उठे नाले ए वेखन वाले भजन, तो फिर एक उठे खलो गए। इन्हें आख्या गल सुनो असी गुरु गोबिंद सिंह हाँ, ना असी बीबी नू मारदे हां, ना असी बुढ़े नू मारदे हां, ना असी बच्चे नू मारदे हां, ना असी भजदे नू मारदे, असी भजदे नू नहीं मारदे, तुसी प्यो दे पुत्तों खड़ो जाओ नहीं तो असी इधर जाने जिहड़े आ आउंदे ने उहनां नू छड्ड के लाल किले वाल भज उठे, वह पहला ही अगे भज उठे, है जी 12,000 दुष्ट ऐ साले बाबा जी ने, मैं तो कहना महाराज इन्हां नू वधिया सुना के फिर मैं समाप्ति करनी है, क्योंकि तुम बहुत कुछ सुन रहे हो, 4वें दीवान लगा रज गए होवोगे, श्रवण करो गुरु गोबिंद सिंह की।

हर हर नाम गोविंद, जप मन हर हर नाम गोविंद, बड पागी गुर सतगुरु पाया गुण गावत परमानंद, जप मन सतनाम सतनाम

चार बाब दो सिंह गुंगुम को अब कैसे गुन गई जप मन सतना। चार बाब दो सिंह गुंगुम को अब कैसे गुन गई है ऊठ तो बैठ ठेंगा पर कब तक मूड ले गई।

अरे मन ओट लियो हरनामा, जप मन सतनाम, रे मन ओट लेहो हरनामा, जाते जाके

जप मन सतनाम सदा सतनाम, हलत पलत मुख उज्जल होइए, जय त्याई हर पुरख निरंजना, जय हर सिमरन भया तै अपाग गत कीनी, बड पागी हर जपना, बड पागी हर जपना। आखिरी पंक्ति है,

हृदय रूपक ते सुल फाग भी चाहेगा, दूसरी बारी तीन ताल ते सुल फाग भी चाह के फिर हृदय स्थाई देते मुका होगा। हृदय यह भी लय जड़ी है एक दूसरे दे नाल मिलनी चाहिए है, पड़ताल विच एक खास विशेषता होंगी है।

गुर अंगद की तेरे कुमारे गुर तीजी पीढ़ी विचारिया क्या हाथ के नाम विचारे।

हमारी जेबा एक रुपया हर के गुण अगम अथाह हम क्यों कर जाए आया हर तुम बड अगम अथाह।

कमल गुण कही है तेरे गुण बहुते मैं एक ना जाने कमल गुण कही है जिह बा

0: कलशम वेंति कृपा कलशम
1: वेंति शरण वेंति वेंति हरि कृपा कर दो
2: वेंति निधि रे रे निधि रे।

गुरु साहिब जी का अपना ही परम पवित्र तन मन धन पिंड प्राण जाहो जलाल तुझको इत शाम इष्ट रूप निष्ठा अलकिस्सा गुरु महाराज जी का परम पवित्र हिरदा ते अपना ही रूप गुरु खालसा सात संगत माई भाई जीओ प्यार सत्कार उत्साह उमा जाओ शाओ चाओ उमाह नाल संपूर्ण फतेह गजानो जी वाहिगुरु का। जितनी दास ने प्रेरणा शब्दों द्वारा दिती है मेरी तसल्ली ने हुई एक बारी फिर उचारो वाहिगुरु का। इन्नी फतेह का उत्तर तया जे मैं एको बारी कहना खालसा जी बजाओ फतेह तां इन्नी कमजोरी नाल दिंदे तां बजा सी मैं ते बड़े शब्दां दी भरमार नाल अलकाबो आदाब नाल आप जी नूं इल्तजा कीती सी तो एक बारी फिर कृपालता करो उच्चारण करो जी वाहिगुरु की फतेह।